नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थिपरंतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु।